0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: मिसिंग दादी के हाथ की साबुदाना खिचड़ी
2: और चटपटी पाव भाजी भी
3: और गर्मा गर्म सीरा भी.
4: वरी नॉट, अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
5: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
4: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
6: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. Sunrise Hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777पर कॉल कीजिए
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे. द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits को सुनने के लिए शुक्रिया. UK के smoothest Asian hits. हमारे sister station Sunrise Retro को सुनना मत भूलिए. On DAB in London, on the Sunrise Radio app or sunriseradio.com पर.
0: Sunrise Hits.

0: सनराइज हिट्स, सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए। एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits को सुनने के लिए शुक्रिया. UK के smoothest Asian hits. हमारे sister station Sunrise Retro को सुनना मत भूलिए. On DAB in London, on the Sunrise Radio app और sunriseradio.com पर. Sunrise Hits पर आज ही advertise कीजिए. UK के smoothest Asian hits. Sunrise Hits sales team को 02085747777 पर call कीजिए.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीएस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमीन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स, द हॉलिडे प्लेलिस्ट सॉन्ग ऑफ द आवर विद स्टार टूर्स। स्टार्ट विद BAPS स्वामीनारायण मंदिर दर्शन इन पेरिस एंड एक्सप्लोर यूरोप्स मोस्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशंस। कॉल टुडे ऑन 0208 900 2323।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राइम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमीन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज द यूके'स स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। दिस इज सनराइज हिट्स।
3: The holiday playlist song of the hour with Star Tours. From Italy to Paris, Japan to the US, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

आज यादों की दराज खुले, पुराने खत मिले, कुछ दिल के टुकड़े मिले, वादे मिले, बीती मुलाकातें मिली, बहुत तलाशा मगर तुम न मिले।

वक्त की सिलवटों में लिपटी कुछ रातें मिली, तुम्हारी खुशबू मिली, कुछ मौसम मिले, तुम्हारे लिए लिखे हुए कुछ शेर, टूटे फूटे अल्फाज मिले, बहुत तलाशा मगर

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, दिस इज सनराइज हिट्स।

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन्स फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
3: The holiday playlist song of the hour with Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours का experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. A new range of desserts has been released for a limited time only. Try one today. Try all four and vote for your favorite to win a special Pepe's prize. Details in store or on the Pepe's website. This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल टीम को 020-8574-7777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। Back to back songs brought to you by South All Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन्स फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
3: The holiday playlist song of the hour with Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours का experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: दिस इज द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: सनराइज हिट्स।
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जयमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जयमीन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स, द यूके'स स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. A new range of desserts has been released for a limited time only. Try one today. Try all four and vote for your favorite to win a special Pepe's prize. Details in store or on the Pepe's website. Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Pepe's Sizzling Song of the Hour. Download the Pepe's app, receive 10% off your first order, give us a review on the app, and you could win a weekly prize of £100 Pepe's voucher to spend at your favourite store.
1: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
2: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
3: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
2: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमीन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, दिस इज सनराइज हिट्स।

0: and Education Helps. They specialise in A-level maths and their programme completely changed his confidence and understanding.
1: Did it really work?
0: It really did. He went from a D to an A star. And now he's studying at his first choice Russell Group University.
2: Education Helps, helping ambitious students achieve A and A star grades and reach top universities. Follow Education Helps 1 on Instagram and see the results for yourself.
3: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
2: सनराइज हिट्स द UK's स्मूथेस्ट एशियन हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
2: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
1: जेमीन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 020-8574-7777 पर कॉल कीजिए
0: Sunrise Hits

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स

0: सनराइज हिट्स, सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूदेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूदेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

आज यादों की दराज खुली, पुराने खत मिले, कुछ दिल के टुकड़े मिले, वादे मिले, बीती मुलाकातें मिली, बहुत तलाशा मगर तुम ना मिले।

की सिलवटों में लिपटी कुछ रातें मिली, तुम्हारी खुशबू मिली, कुछ मौसम मिले, तुम्हारे लिए लिखे हुए कुछ शेर, टूटे फूटे अल्फाज मिले, बहुत तलाशा